0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हाँ तो चल रही है दुनिया में डिफरेंट तरह की जंगें, बट दैट डज नॉट इम्पैक्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. उनका अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है. 2026 का मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटिंग ट्रेंड इज डॉग फिशिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता मछली पकड़ने जाता है, इसका मतलब ये है, विच वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स फाउंड आउट द हार्ड वे, जब एक आदमी या औरत अपने पड़ोस के टॉमी कुत्ते को गले से लगाकर फोटो खींचकर डेटिंग ऐप पर डाल देती है, एंड आफ्टर यू राइट स्वाइप देम फॉर थिंकिंग कि माई गॉड इसे जानवरों से कितना प्यार है, यू रियलाइज कि इसके पास जानवर है ही नहीं. द ओनली जानवर ही इज इंटरेस्टेड इन आर हिज एक्सेस. That's exactly what happened to my bestie and she was heartbroken legit. So agar aap ek aise insaan ho who is guilty of dog fishing, please don't text me, or maybe you should, because maybe I can convince you there are better ways of looking very hot on a dating app without lying. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Find me on the gram ya Facebook and while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर. टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10. क्यों नहीं चाहिए? चल ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी

0: Mirchi.
1: Busca bala, busca bala, saca bala.
2: Gran bala.
1: Burga, burga. La vida es bala, burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
3: अभी कोई और बोल रही थी?
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
11: थैंक यू
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
13: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
14: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
15: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
15: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
17: या आई थॉट मा वुड से नो, and she said build your life the way you dream it.
18: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self, from Tanishq this Mother's Day enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges, also 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product, raised you to become. Conditions apply.
19: Tera kya hoga Kalia?
5: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: You're a bit of a skunk, honestly. क्योंकि आप अपने नेबर्स को नॉटी काम करते हुए ना कि सिर्फ देखते हो बट आपने वो देखने के लिए बेहतर अपने लिए बाइनोक्यूलर्स खरीद ली हैं. शर्म नहीं आती आपको ये करते हुए मौसी जी?
2: The secret box.
1: Okay, maybe you're not मौसी जी, who knows? मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर who's definitely not my मौसी जी. I hope he's not my मौसा जी either. Hello, mystery caller.
3: Hi, Roshi.
1: How are you, mystery caller?
3: I am good. How are you?
1: ये इतने excited क्यों sound कर रहे हो भाई? क्या हो गया? शादी वादी होने वाली आपकी?
3: यार मतलब बद्दुआ भी नहीं और दो
1: शादी is not a badua if you're married to the right person. Anyway, but yeah, so you're not getting married. Okay, that's out of the way.
3: No.
1: तो action is very good right now. Is that it?
3: Yeah, चीजें बहुत अच्छी हैं. मतलब I have a girlfriend.
1: Wow.
3: बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाती है, प्यार से बातें करती है. मतलब एवरीथिंग इज लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. नहीं जाती थी जाते थे कि हाँ इतना अच्छा क्यों हो रहा है. वो ये बट एक प्रॉब्लम है बस कि वो जब अपने ऑफिस की या कुछ भी बात बताती है ना तो जब वो बताने बैठती है तो सुबह होती है शायद और जब वो बता के उठती है तो शायद अगली सुबह हो जाती है क्योंकि मैं उठ ही रहा होता हूँ दोनों पास. तो यार यही होता. तो मैंने एक नया तरीका निकाला है. तो आई हैव अ फ्लैटमेट, वो मेरी गर्लफ्रेंड का भाई बना हुआ है.
1: okay.
3: हाँ, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है. जैसे वो बातें बताना शुरू करती है ऑफिस में, वी टॉक इन द इवनिंग, मैंने स्पीकर निकाल के मैं सो जाता हूँ क्योंकि नाइट शिफ्ट है. तो रात भर बैठ के 6-6 घंटे सारी बातें सुनता है. और अगर वो मुझे मतलब वेनी टेंस अगर छूट जाए और उसके ऊपर मैं गाली खा रहा हूँ तो मेरा दोस्त पिटता है. लेकिन ये ना तो मेरी गर्लफ्रेंड को पता ना उसने अब तक बताया. सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग विदाउट गिविंग एनीथिंग एंड आई एम स्लीपिंग आल्सो.
1: एक सेकंड, तो बीच में जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये लंबी चौड़ी राम कथा धुरंधर पार्ट 4 सुना रही होती है तो डजंट शी नीड यू टू से ऐसे उसको जरूरत?
3: तो सबका सही नहीं आता है.
1: तो आपका आपका फ्लैटमेट बोलता है? डूड सीरियसली ऑनेस्ट टू गुडनेस, मैंने बहुत ज्यादा बदतमीज लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, सुने हैं, बट आपके जैसा बदतमीज टेक्स द केक. आपको रोशिफाई कर दूं या आपके दोस्त को रोशिफाई करना है?
4: You've been roshified.
1: देखो तुमसे बात करके बहुत मजे आए. अब मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी चिपक चिपक के नोटी नोटी चीजें क्यों करती है. दबा हो यहाँ से. आपसे बात करके बहुत मजे आए. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, why don't you hit me up and tell me all about it on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Oh no!
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
3: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
2: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islin.

गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरा बॉयफ्रेंड और मैं, हम पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं एंड इट्स नॉट बीन स्मूथ, देर हैव बीन बम्प्स ऑन द वे, लेकिन मुझे लग रहा था वी वर डूइंग रियली गुड और इस वीकेंड पर वी वर स्पेंडिंग द वीकेंड टुगेदर एंड ही केम अप विद दिस वन वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन इन विच ही सेड कि वो अपनी सेक्शुअलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, जानता नहीं है इफ ही इज इन टू वीमेन और मैन और बोथ एंड ही सेज दैट ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू मी, वो चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में रहूँ हमेशा, लेकिन राइट नाउ ही इज आस्किंग फॉर अ ब्रेकअप बिकॉज ही सेज कि उसे वक्त चाहिए टू फिगर आउट हिज सेक्शुअलिटी. मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब अगर वो ब्रेकअप मांग रहा है तो ऑब्वियसली आई विल ब्रेकअप, बट क्या इज़ देयर होप इन दिस वेरी क्रेजी सिचुएशन कि हम वापस फिर कभी भी एक कपल हो पाएंगे?
0: रोशी के DM से.
1: This person has asked that मैं इनका नाम नहीं रिव्यू करूं and I completely honor and respect that. Sweetheart, I think that sure he has broken up with you at this point in time and वो जब आपसे कह रहा है that he is questioning his sexuality, ये बहुत बड़ी बात है for a man to come out clean like this and say कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि while I am trying to figure out कि मैं क्या prefer करता हूँ, कहाँ स्पेक्ट्रम में मैं कहाँ लाई करता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग यू विद मी. सो ही इज एक्चुअली बींग वेरी ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ लव टू यू अबाउट दिस सिचुएशन. एट दिस पॉइंट इन टाइम आप उसके दोस्त शायद ना बन पाओ, उसे सपोर्ट ना कर पाओ एंड दैट्स ओके बिकॉज आपके खुद के भी बहुत फीलिंग्स होंगे टू अनपैक. तीसरी चीज, आई फील लाइक एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ अगर आप उसके साथ अटैच्ड रहे या कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखा या होप अलाइव रखी, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन फॉर योर सेल्फ. सो माई सजेशन इज राइट नाउ आप उन्हें फ्रीडम दें टू एक्सप्लोर हिज सेक्शुअलिटी, अलाउ हिम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद हिज लाइफ. ऑन योर पार्ट आई थिंक यू शुड सेपरेट एंड हील, फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग. 3 years ऑफ अ रिलेशनशिप इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. And what I wish for you is genuinely a healthier relationship in the times to come. On that note, agar aapki bhi zindagi mein something really bothersome is shaking you up, why don't you hit me up? We'll talk about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, do what you need to do, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Okay, let's just talk about what happened with Jackie Bhagnani and Rakul Preet जब वो दोनों एक recently interview दे रहे थे, in which Jackie Bhagnani, who is married to Rakul Preet, said हम दोनों almost like एक situationship में हैं, and you're like नहीं भाई, इसे शादी कहते हैं. और situationship for Jackie Bhagnani, if he is listening to this, and for other people जिन्हें confusion है एक situationship और शादी में, वो ये है कि सिचुएशनशिप एक ऐसी चीज है रिलेशनशिप में जहां आप एक दूसरे को डेट शायद कर रहे हो, शायद नहीं. यू आर बोथ और आइदर वन ऑफ यू कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या हमें हैंग आउट करने में और एक दूसरे के साथ नॉटी होने में मजा आता है? क्या हम एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं? दैट इज व्हाट अ सिचुएशनशिप इज, मिस्टर जैकी भगनानी. इट इज नॉट बीइंग मैरिड एंड देन कॉलिंग इट अ सिचुएशनशिप. लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आपका भी पार्टनर इसी तरह का इग्नोरामस है, अर्थात वो इंसान जिसे पता नहीं है कि उसकी एल्बो और पिछवाड़ा कहाँ है और कैसे लोकेटेड है, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड मे बी वी कैन डिवाइस अ वे टू मेक योर पार्टनर बिकम मोर इंटेलिजेंट, जो शायद ना हो सके. वी डोंट नो अबाउट दैट. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochIe. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट. It's

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतार बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तू बात करे या ना मुझसे,

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

तेरा काम हो गया ना यहाँ पर, तो अब या तो तू मेरे रस्ते से हट जा ब्रो, या मेरे और काम आ जा, बट लाइक डोंट जस्ट हैंग अराउंड हियर एंड वेस्ट माय टाइम एंड योर टाइम. आई एम गेसिंग कि एनिमल किंगडम में स्कॉर्पियन लेडीज को ऐसा ही लगता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस विद स्कॉर्पियंस इज कि वो एक टाइम में ऑलमोस्ट 100 बच्चों को जन्म देते हैं आफ्टर गेटिंग नॉटी ऑब्वियो. एंड व्हाट हैपेंस इज क्योंकि ये 100 बच्चों को जन्म देना इतना लाइक टायरिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस के बाद एक स्कॉर्पियन को भूख लग रही है एंड दे रियलाइज कि जिस इंसान के साथ, इंसान नहीं, जिस स्कॉर्पियन के साथ उन्होंने मेट किया था, एंड इस केस में भी मल्टीपल स्कॉर्पियंस होते हैं, अगर वो आसपास घूम रहा है कहीं पे ऐसे ही, मतलब यू नो, अपना प्यार जताने के लिए, शी इज लाइक तुझे मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है, कम लेट मी ईट यू, और वो खा जाती है अपने मेल पार्टनर को बिकॉज उसे भूख लग रही होती है, उसने अभी अभी बर्थ दिया है, एंड दिस मेल पार्टनर ऑब्वियसली उसने अपना काम करके, अब वो किसी काम का तो है नहीं, माइट एज वेल उससे कोई और काम करा ले, विच इज टू सीज हिज एग्जिस्टेंस टू फीड योर स्टमक, विच इज नॉट अ बैड आइडिया. बिकॉज कई बार आई एम श्योर आपने भी अपने पार्टनर को देखकर यही सोचा है कि यार इस बंदे को मैं कैसे इस दुनिया से हटा सकती हूँ या हटा सकता हूँ. अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, इट्स अ क्रेजी AF कन्फेशन, बट मेक इट नेवरतलेस. इंस्टा पर या FB पर मेरा नाम है मिर्ची रोशी, फाइंड मी देयर, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. प्रॉमिस आई विल नॉट किल यू आफ्टर टॉकिंग टू यू, सो हिट मी अप बिंदास, एंड कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Honestly, मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करती हूँ. You know, I just got up and put on like the only t-shirt I could find and my jeans and I came for this date. But really, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. Thanks so much. अगर आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जो डेट पर जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन यू वॉन्ट टू कम अक्रॉस ए somebody जिसने खास मेहनत की नहीं थी, यू वर जस्ट बॉर्न लाइक अ गॉड और अ गॉडेस, देन इन दैट केस कलर थेरेपी सच में वाकई में आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि ब्लू एक ऐसा कलर है जिसे पहनते ही आप कैजुअल भी लगोगे, इन कंट्रोल भी लगोगे, काम भी लगोगे और ऐसे एफर्टलेसली चार्मिंग लगोगे. एंड ब्लू इज द ओनली कलर इन द स्पेक्ट्रम दैट कैन डू ऑल दिस फॉर यू. लकीली इसके लिए करना कुछ नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू वेयर अ पेयर ऑफ जीन्स व्हिच आर ब्लू इन कलर अगर डेनिम है, एंड यू कैन इवन वेयर लाइक अ समर जैकेट, जो डेनिम की समर जैकेट होती है. यू विल एंड अप लुकिंग नॉट जस्ट वेरी फैशनेबल एंड क्लासी, लेकिन ऑल्सो ये कलर थेरेपी की टिप विल मेक श्योर दैट यू एंड अप बीइंग अनफॉरगेटेबल. सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप फन भी हो, स्टेबल भी हो, नॉटी भी हो, सेन भी हो. एंड हु गेट्स ऑल ऑफ दैट इन वन पर्सन? यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप. और अगर आप ऐसे ही पर्सनलाइज्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La virtual la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
3: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: You're a bit of a skunk, honestly. क्योंकि आप अपने नेबर्स को नॉटी काम करते हुए ना कि सिर्फ देखते हो बट आपने वो देखने के लिए बेहतर अपने लिए बाइनोक्यूलर्स खरीद लिए हैं. शर्म नहीं आती आपको ये करते हुए मौसी जी?
2: The secret box.
1: Okay, maybe you're not मौसी जी, who knows? मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर who's definitely not my मौसी जी. I hope he's not my मौसा जी either. Hello, mystery caller.
3: Hi, Roshi.
1: How are you, mystery caller?
3: I'm good. How are you?
1: ये इतने excited क्यों sound कर रहे हो भाई? क्या हो गया? शादी वादी होने वाली आपकी?
3: यार मतलब बद्दुआ देनी और दो.
1: शादी is not a बद्दुआ if you're married to the right person. Anyway, but so you're not getting married. Okay, that's out of the way.
3: No.
1: तो action is very good right now. Is that it?
3: Yes. चीजें बहुत अच्छी हैं. मतलब I have a girlfriend. बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाती है, प्यार से बातें करती है. मतलब एवरीथिंग इज लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. नहीं मिल जाती कि इतना अच्छा क्यों हो रहा है. वो ये बट एक प्रॉब्लम है बस कि वो जब अपने ऑफिस की या कुछ भी बात बताती है ना, तो जब वो बताने बैठती है तो सुबह होती है शायद, और जब वो बता के उठती है तो शायद अगली सुबह हो जाती है, क्योंकि मैं उठ ही रहा होता हूँ दोनों पास. तो यार यही होता है. तो मैंने एक नया तरीका निकाला है. तो आई हैव अ फ्लैटमेट, वो मेरी गर्लफ्रेंड का भाई बना हुआ है कि okay. हाँ मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है. जैसे वो बातें बताना शुरू करती है मैं स्पीकर निकाल के मैं सो जाता हूँ, क्योंकि नाइट शिफ्ट है. तो रात भर वैसे छह छह घंटे सारी बातें सुनता है. और अगर

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

कुछ भी करो ना, अपनी फर्स्ट या सेकंड डेट पर ब्रैग नहीं करना चाहिए कि यार चंडीगढ़ में तो मेरी 3-3 फैक्ट्रियां हैं, यार क्या बताऊं, पापा ऐसे इतनी महंगी महंगी 12-12 लाख की घड़ियां लेके दे देते हैं एंड आई एम लाइक क्या करूंगा, मेरे पास 10 ऑलरेडी हैं। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आपको क्यों लगता है कि सामने वाला इंसान एक्चुअली इम्प्रेस हो जाएगा? अनलेस दे आर लुकिंग फॉर योर मनी, दे आर एक्चुअली अ गोल्ड डिगर। आई वेंट आउट ऑन अ डेट रिसेंटली और इस बंदे ने इतना ब्रैग किया कि जहां वो डेट शायद 1-2 घंटे चल जाती, आई कट इट शॉर्ट इन लिटरली 33 मिनट्स। आई वाज लाइक मैं और झेल नहीं सकती, आई मेड सम वेरी क्रेजी एक्सक्यूज एंड गॉट आउट ऑफ देयर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ब्रैगिंग इज अ रियली बैड हैबिट वैसे भी, लेकिन डेट के टाइम तो कतई मत करना अनलेस यू वॉन्ट अ डेट टू गेट ओवर एंड इन अ वेरी अनप्लेजेंट वे। अब ये बताओ कि आपके साथ कभी ऐसे डेटिंग ब्लूपर्स हुए हैं? अगर हाँ देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। एंड व्हाइल यू डू दैट, जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501.
2: हेलो.
4: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपको.
2: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
4: होता है. आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं कुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ए पगला.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना वो कहते हैं हैंगओवर होता है। एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबी वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
3: अभी कोई और बोल रही थी?
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
3: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि

उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वाज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलिया राजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलिया राजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? दी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज़ दिस
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रहा है
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज अगला गाना इज अ कल्ट सॉन्ग. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या जिंदगी से नाराज होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है. सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये. यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी, ओरिजिनली तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रू पुथी नाथू कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला ए जिंदगी गले लगा ले. कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया. कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए ओपन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
3: हेलो,
5: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
5: है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।
1: दीवाना

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Rambala! Burga, burga. La virtual la burga.
0: ¡Mirchi, burga!
2: ¿Aló?
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM
3: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Gambana.
1: Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
3: कौन बोल रहा है
4: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
3: क्या मजाक चल रही है
4: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
5: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू
6: Mirchi Murga, Naveed ke saath, only on Mirchi. It's hot.
7: Yep, bajao.

0: से है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कभी कभी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट पर ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आती है, उसे छोड़ देना चाहिए या पकड़ लेना चाहिए। आइए इसे एक इंडियन क्रिकेटर के एग्जाम्पल से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, T20 वर्ल्ड कप विन के बाद ना एक कमाल की कहानी बाहर आई है, एंड आई वाज रियली मूव्ड बाय रीडिंग इट। तो ईशान किशन ने फाइनल्स के बाद ये बात बताई सबको कि जस्ट वन डे बिफोर द फाइनल्स ही लॉस्ट हिज कजन एंड ब्रदर इन लॉ इन अ कार एक्सीडेंट, वो मारे गए थे। और जब उन्होंने ये बात मैच के बाद सबको बताई, तब समझ में आया कि कितने प्रेशर में या किस इमोशन के साथ वो खेले होंगे, और उन्होंने विन अपने कजन को डेडिकेट किया, सिस्टर को। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब कुछ खेल रहे होते हैं ना, वो आइडियल सिचुएशन में नहीं होता। तो जब ऐसा हो, एक तो ईशान किशन का एग्जांपल है आपके पास कि ऐसा हो गया, मेरा सवाल आपसे है कि ये जरूरी है कि आइडियल कंडीशन में आप इमोशन के साथ जूझ रहे हैं और आपको परफॉर्म भी करना है, हाउ डू यू डू दैट?
4: That's where mental preparation comes, ना? है ना, उस समय पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लूज भी नहीं करना चाहते। आप इस प्लेयर की बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर इवन रीडिंग अबाउट विराट कोहली सम टाइम बैक की हिज फादर हैड पास्ड अवे एंड देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट मैच एंड देन ही सेड नहीं आई वांट टू प्ले, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई होती है। फिजिकली आप प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड होना, मेंटली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि उस समय पर मन है, मन पास्ट में जाता है, मन फ्यूचर में चाहता है, मन ग्रीव करना चाहता है, मन कुछ और सोचना चाहता है। पर अपने मन को उस समय कहना कि इतने घंटे के लिए आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है, यही सोचना है, यही फील करना है, तो आप मन के मालिक हैं। मन तो भागना चाहता है, मन इधर जाएगा इधर जाएगा, पर मन के मालिक क्या है? अपने मन को जहां लगाना चाहो, जितना समय लगाना चाहो, जो सोचना चाहो आप सोचो। पूरा होने के बाद जो सोचना है आप सोचेंगे, ही मस्ट हैव ग्रीव्ड या उसको जैसे भी आपने किया, बट एटलीस्ट आप इतने मालिक थे कि उतने समय के लिए यू कुड शट इट एंड यू कुड डू व्हाट यू वर सपोज टू डू एंड यू कुड परफॉर्म व्हाट यू वांटेड टू परफॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दर्द के बीच भी परफॉर्म कर पाना एक अंदरूनी जीत से कम नहीं होता। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ईशान किशन की नॉक जो 54 की उन्होंने फाइनल्स में की, वो उनके कजन सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद एक ही दिन पहले हुआ था, तो वो सुनकर मुझे लगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दर्द में भी परफॉर्म करना पड़ता है, आपको भावनाओं के साथ भी परफॉर्म करना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल है। आप कैसे हैंडल करेंगे ऐसे सिचुएशन को कि दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप कभी मिल नहीं पाएंगे उनसे। ऐसे सिचुएशन में आज ये स्टोरी बाहर आ गई, हमें पता है, लेकिन नॉर्मली अगर किसी के साथ हो तो क्या करें?
4: जो हमने वही बात करी ना कि उस समय पर आप वो एक्सपीरियंस करेंगे जो आप सोचेंगे। पहले तो डेथ के प्रति भी हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, और डेथ को भी समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति की डेथ, एनीबडी, व्हेन यू गो थ्रू दिस थिंग, इट इज चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। आत्मा नहीं मरती है, कजन नहीं मरा है, लेकिन हाँ, उस फॉर्म में, उस कॉस्ट्यूम में आप दोबारा उनको देख नहीं पाएंगे, शायद बात नहीं कर पाएंगे, बट एज अ सोल वो इटर्नल है। सो दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ फॉर मे बी समथिंग बेटर फॉर अनदर पार्ट, क्योंकि ये चीज तो निश्चित होती है। कोई भी कारण बन जाता है, एक्सीडेंट है, कुछ भी अलग अलग कारण बनता है। नाउ व्हेन दे मूविंग फॉरवर्ड इन देयर जर्नी, आपके पास दो ही ऑप्शन होता है कि आप जब उनको आगे जाने दे रहे हैं तो दर्द से या दुआओं से। चले तो वो गए, वापस तो वो आ नहीं सकते। तो ये भी हमें याद रखना है कि जब भी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है, जैसे आप तब भी कह रहे थे कि ये पता नहीं चलता ना, व्हेन लाइफ विल थ्रो लेमन्स एट यू, पर उस समय लेमनेड बनाने का मतलब क्या है? हाउ यू परसीव इट, हाउ यू डील विद इट, पावर टू फेस कितना है? ये भी तो शक्ति है, सामना करने की शक्ति। डेथ एक सिचुएशन है, आपके अंदर सामना करने की शक्ति कितनी है? सामना करना मना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर दिया कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। सो डेफिनेटली वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस चीज को फील नहीं किया, लेकिन फॉर सम टाइम ही वॉज एबल टू अपने मन को जहां लगाना था, जो करना था वो कर पाए, एंड देन ही कुड गो बैक एंड ग्रीव और डू व्हाटएवर दिस इज नीडेड। ये तो उनके लिए एक समझो मैच था। कभी कभी किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, किसी के लिए एग्जाम होता है, किसी के लिए, हर एक की लाइफ में कई बार कोई सेटबैक होता है, और आप वहां पर अपॉर्चुनिटी होती है, और आपको पता है अगर आपने आज इसको नहीं इसको ग्रास्प किया तो भी उसमें आपका लॉस है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: रीचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रीचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इंडियन क्रिकेट के उभरते प्लेयर ईशान किशन से सीखते हैं मेंटल टफनेस क्या होती है।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: सिस्टर, तो वर्ल्ड कप के दौरान रिंकू सिंह लॉस्ट हिज फादर और वो वापस आए, लेकिन उसके बाद उनको वर्ल्ड कप में किसी मैच में लिया नहीं गया। वो टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि उनके जगह किसी और को जगह मिली। अगर मैं रिंकू सिंह हूँ तो मुझे लगेगा कि यार मुझे परिवार के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति और फिर मेरे परिवार के प्रति होनी चाहिए। मैं आया, मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उस समय डिसीजन लिया, नहीं मेरे को टीम के साथ जाना जरूरी है, लेकिन जब मैं आया मुझे और गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर मैं रिंकू सिंह हूँ तो मेरे दिमाग में ये तो आएगा ना कि अगर मैं शायद अपने परिवार के साथ रहता वो ही बेहतर होता।
6: किसी भी मोमेंट पर हमारे पास चॉइसेस होती है और हम कई सारे फैक्टर्स को देख करके कोई डिसीजन लेते हैं, वो हमारा डिसीजन होता है
5: जी।
6: उसका आउटकम क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन उस मोमेंट में हमें वो डिसीजन बिल्कुल राइट लग रहा होता है। तो मे बी फॉर दैट प्लेयर जिसने अपना सारा साल, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना सब कुछ, उनके लिए वो प्रोफेशन, वो क्रिकेट सब कुछ होता है। सो मे बी फॉर हिम जस्ट बीइंग देयर विद द टीम उस समय पर वहाँ होना वो उनको ज्यादा जरूरी लगता होगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती होगी, शायद उसमें उनको कंफर्टेबल फील होता होगा। एंड आई थिंक प्रॉब्ली उनकी फैमिली भी वो चीज को समझती होगी। अभी क्या उनके मन में है वो तो हमें नहीं पता है, बट अगेन जो भी डिसीजन आज हम लेते हैं हमें वो राइट लगता है इसलिए हम लेते हैं। नाउ मे बी टुमारो आई फील उसका आउटकम देख करके कि ये डिसीजन राइट नहीं था, सो इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट टाइम उससे मैं सीख करके अपने डिसीजन को बदलूं, पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की उथल पुथल को बैलेंस कैसे किया जाए, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार क्या होता है कि आपको आपके परिवार वाले दोस्त बोलते हैं कि ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई तुम गए भी और फिर तुमको मैच खेलने का मौका भी नहीं मिला, तो फायदा क्या, घर पे रहते, परिवार का साथ बनते, सबके साथ रहते, ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है।
4: नहीं, पर जरूरी होता है अपने साथ बैठ करके पूछना कि उस समय पर मेरा राइट कर्म क्या होना चाहिए था। इफ आई हैव प्लेड माय पार्ट वेल तो मेरी कॉन्शियस क्लीन रहती है। आप जो भी करेंगे, बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होंगे और वो ओपिनियन रिफ्लेक्शन होती है उनकी पर्सनैलिटी के, उनके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के। आपके प्रिंसिपल वैल्यूज और आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय क्या है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो भले वो कहेंगे कि आप वहां भी रह जाते, पर एज अ प्लेयर अगर आपको लगता है कि नहीं, वहां होना भी मेरा जरूरी था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मेरा फर्ज था, देन आई थिंक यू हैव प्लेड योर पार्ट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: अनिरुद्ध सिंह ने सवाल भेजा है कि मेरा परिवार अभी अपने सबसे मुश्किल और कमजोर दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए?
3: मुश्किल हो सकता है, लेकिन कमजोर या शक्तिशाली आपके ऊपर।
2: बिल्कुल, तो खड़े रहिए, आप डटे रहिए, साथ दीजिए।
3: मुश्किल तो हो ही सकता है। जैसे देखो, क्या होता है कि हम किसी सड़क पर चल रहे हैं, वो सारी सड़क पे खड्डे खड्डे खड्डे हैं, लेकिन हमने कंफर्टेबल शूज पहने हुए हैं तो हम पार कर जाएंगे।
2: सही बात।
3: पर रोड बहुत अच्छी है, पर मेरे ही शूज के अंदर एक कंकर है, तो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। माना जर्नी में कितने भी उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आप शक्तिशाली हैं तो आप पार कर जाएंगे। लेकिन जर्नी बहुत स्मूथ है और आप ही कमजोर हैं, तो फिर छोटी बात भी आपको बड़ी लगेगी। तो पहले मुश्किल दौर है, एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिसगाइज। उससे सिर्फ गो थ्रू नहीं करना है, उसे ग्रो थ्रू करें और हम उससे ग्रो करें, उसको तोहफा बना दें, उस तूफान को तोहफा बना दें, वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: अनमोल फ्लोरिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि जिंदगी में एक दौर आता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब में हम इतना खो जाते हैं कि समझता ही नहीं है, बस काम करते रहते हैं। आखिरी में सब ऐसे लगता है कि लाइफ हमने खराब कर दी है अपनी, क्या करें।
3: जर्नी एंजॉय नहीं करी ना, तब ऐसा लगता है
2: बस जीते गए। लेकिन
3: काम तो सबको ही करना है, कौन है जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक होता है कि हम सोचते हैं काम कर ले, जब सारे काम पूरे हो जाएंगे फिर जिएंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ कर ले फिर एंजॉय करेंगे, फिर जिएंगे। और एक होता है कि आप उस जर्नी को खुशी से करते हैं। आप ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग थोड़ी ना है।
2: तो अब जीते जीते कर रहे हैं सब कुछ,
3: हम ह्यूमन डूइंग बन गए हैं।
2: हम सिर्फ कर रहे हैं,
3: हमें थोड़ा बहुत भी जो अच्छा लगता है ना, वो डूइंग का जब लिस्ट कंप्लीट हो जाती है ना
2: उसके बाद,
3: हाँ,
2: लेकिन वो होता नहीं कभी।
3: थोड़ा सा रिलीफ लगता है, बहुत टेम्पररी सा, आपने सारा टिक मार्क कर लिया, इट्स अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कि सब कुछ हो गया।
2: उसके बाद सडनली देखते 10 काम और आ गए,
3: फिर एक लिस्ट रेडी होती है। सो इट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि आप जो कर रहे होते हैं, और ये बहुत छोटे से सिखाया जाना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो खुशी से पढ़े, एग्जाम दे रहे हैं तो खुशी से एग्जाम दे, पार्टी में जा रहे हैं तो खुशी से पार्टी में जाए। खुशी मना मन की स्थिति, पर्पस है अंदर, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों के साथ ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज लिविंग लाइफ, इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग, इट्स लिविंग लाइफ, यू आर एक्सचेंजिंग दैट प्योर एनर्जी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने अपनी लाइफ खराब कर दी। पर कोई बात नहीं, इस मोड पर भी
2: एंजॉय करना सीखो।
3: वेयर एवर यू आर, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, जो भी कर रहे हैं। देयर वाज देयर सो मेनी टाइम्स जब हमारे मन में होता है कैसे तैसे इसको खत्म करें। मन कई बार कहता है बस आज का दिन पूरा होगा ना, तो बस उस समय अपने को कहे नहीं, ये जो भी है, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो एक कंपनी का कोई काम है, मुझे इसको एंजॉय करना है, मुझे इसको खुशी से करना है।
2: सही बात।
3: वो कर लें कैसे तैसे पूरा करें, फिर आदत पड़ जाएगी। फिर हर चीज में कहते हैं कैसे तैसे कॉलेज पूरा हो जाए, कैसे तैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, कैसे तैसे ये ट्रिप पूरा हो जाए, संस्कार पड़ जाता है। देन यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट थिंग टू बी ओवर, फिर आप उस चीज को रिलीफ को एक्सपीरियंस करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
4: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సోలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: डॉक्टर श्री ची ने लिखा है, क्या हमें बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए जब हमें पता है कि वो हमें पसंद नहीं करते और हमारी तरक्की भी नहीं चाहते?
3: पैर छूना वॉज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी।
2: जी,
3: तो हम वो करते हैं जो हमारा रोल है। अभी उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं, आशीर्वाद माना किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को गुड विशेस देना, जो करना ही चाहिए, हर एक की सफलता में खुश होना चाहिए। पर अगर कोई नहीं करता है तो मैं भी अच्छा अपना अच्छा संस्कार छोड़ दूं।
2: ये तो सही नहीं है,
3: वो ठीक नहीं है। हम पैर इसलिए नहीं छू रहे हैं कि वो आशीर्वाद दे, हम इसलिए छू रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ डिग्निटी, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। आप जो कर रहे हैं, आप अपने से पूछे मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि करना चाहिए। अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है वो ना करे, लेकिन अगर वो मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने वो प्रैक्टिस क्यों करी है, वो प्रैक्टिस मेरे लिए जरूरी है, वो मुझे एम्पावर कर रही है। अभी दूसरा क्या कर रहा है और वो अगर उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम अपना अच्छा वाला संस्कार छोड़ दें तो वो तो कोई बहुत समझदारी नहीं है।
2: वेरी नाइस।
3: मैंने इसमें जैसे कई बार होता है ना कि उसने नमस्ते नहीं बोली, मैं भी अगली बार नहीं बोलूंगा। अरे, नमस्ते कहना, किसी को ग्रीट करना आपका संस्कार है। आप अगर चार बार नमस्ते करेंगे और वो नहीं भी करता था तो क्या होगा, वो करना शुरू कर देगा। आप हर बार ह्यूमिलिटी से उनके पांव छुएंगे तो वो नहीं भी आशीर्वाद देना होगा ना, तो भी उनके दिल से दुआ निकलने लगेंगी। ये होता है, आप अच्छे हैं तो अच्छाई का प्रभाव पड़ता है, उनके मन, उनके विचार, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि बदलने लगती है। So never give up on your good practices.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: लवली ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आया है। कहते हैं कि हमारी सासू माँ से हमारी बनती नहीं है और पति को काम भी नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके लिए हमें घर छोड़कर बाहर रहना चाहिए?
3: जब घर के अंदर चैलेंज आता है तो घर वाले एक दूसरे को सहयोग नहीं देंगे तो कौन देगा?
2: सही बात।
3: रिश्तों में हमेशा वही नहीं होता ना कि लेना है। आज जब चैलेंज है तो हम चले क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, पर ये तो किसी के जीवन में भी हो सकता है। जॉब अनसर्टेनिटी तो इस समय इतनी बढ़ गई है। आज के सिनेरियो में आज जॉब है, अगले महीने भी होगी कि नहीं होगी नहीं पता है। सो व्हेनेवर आपकी फैमिली एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, उस समय पर सपोर्ट करना, उस समय उनके साथ रहना, वही तो रिश्ता था। नहीं तो हम रिश्तों में क्यों आए? हम इसीलिए तो आए ना कि जब कोई उतार चढ़ाव होगा तो हम मिल करके उसको पार करेंगे। तो मिल करके पार करने का मतलब क्या था कि उस समय ट्रस्ट किया, उस समय कोऑपरेट किया, उस समय घर में शांति का वायुमंडल बनाया। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो वो कहते हैं कि हमारी मदर इन लॉ से बनती नहीं है, सी रिश्ता एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। बार बार आपकी सासू माँ आपकी तरह नहीं हो सकते, आप उनकी तरह नहीं हो सकते, आप डिफरेंट ही रहने वाले हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छा सोचना तो शुरू करें। मन में रिश्ता बनता है, मन में वो रिश्ता बहुत खराब हो चुका होता है। ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। इनफैक्ट टुडे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, मैं यहाँ आ रही थी लोकल ट्रेन में, बहुत सारे आप बैठे होते हैं ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कहीं पर हम लोग डिटैच होकर के कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं, तो उसमें भी एक बहन कह रही थी छुट्टी का दिन होता है तो उसमें भी सासू जी जो मदर इन लॉ ने वो यही कहेंगे, आज क्या कर रहे हो, आज क्या बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर कहती आज कुछ नहीं कर रहे हो। So they were all talking a little negative about their family. They were all in the train and talking little negative about their family. The thing is, relationship is exchange of energy.
2: जो आप दोगे वो ही वापस मिलेगा।
3: वो words behavior नहीं है ना। संडे में आपने best behavior रखा होगा,
2: लेकिन मन में सोचा,
3: पर आप तो उनके लिए negative सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वो रिश्ता तो खराब ही होना है।
2: तो अच्छा,
3: फिर आप कहेंगे मैं सब कुछ करती हूँ, मैं उनके अनुसार चलती हूँ, तो भी वो मेरे से संतुष्ट नहीं होते। तो आप सब कुछ उनके अनुसार नहीं कीजिए, वो हो नहीं पाएगा। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप बस उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनके प्रति शुभ भावना रखिए, प्यार से बात कीजिए, सुख दीजिए, ठीक हो जाएगा रिश्ता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर चाय गर्म है, गॉसिप गर्म है और वेदर वो कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज दे देता है। आज सुबह अगर तुम ट्रेन पकड़ रहे हो, जूम कॉल पर फेक स्माइल के साथ ज्वाइन कर रहे हो या बस किचन में बर्तनों के साथ लड़ाई कर रहे हो, आई गॉट यू। एंड ऑनेस्टली देसी एक्सपैट लाइफ भी एकदम फुल ऑन बॉलीवुड मल्टीवर्स की तरह है, राइट? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टीम और शाम को मम्मी का शादी कब कर रहे हो वाला फेस टाइम अटैक हो जाता है। और जो लोग शादीशुदा है दे शुड बी लकी। आज के महंगाई के जमाने में अब तो शादी करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन आसान है इस शो पर मिलना फुल पैसा वसूल कॉम्बो, यानी कि मस्त मिर्चीदार म्यूजिक, फिल्मी फील्स, स्पाइसी स्टोरीज, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, थोड़ा सा लाइफ का केओस जिस पर हम बात करने वाले हैं, कुछ लाइफ हैक्स एंड वो देसी वार्मथ जो सिर्फ हमारे लोग ही समझ सकते हैं। सो वॉल्यूम बढ़ाओ, स्ट्रेस को भूल जाओ। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझे सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मुझे देख सकते हो इंस्टा और एक्स पर जाकर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस। फटाफट से फॉलो करो मुझे MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मुझसे अभी बात कर सकते हो 9033 मिर्ची इज माई नंबर 9033647244। राइट नाउ मिर्ची देयर बैंगर्स का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¡Hi! ¿Ye call? बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर. हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपका पासवर्ड.
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये. एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं खुकड़ू को.
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
15: I am not going to bed with you ever again.
14: But why? What did I do?
15: That bed is horrible. It's outdated. And when we are on it, it creaks so loud. Ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
14: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
15: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
14: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
15: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
14: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S. Your bedroom will never be the same again.

0: Priscilla, it's hot.
1: Good morning, cuties. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. And of course, this is Mirchi Mornings, but time traveling time, जहाँ पर हम आज की डेट को रिवाइंड करके पता करेंगे कि फ्लैशबैक में आखिर हुआ क्या था. 1551 में पेरू में सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी बनी थी आज के दिन. इट इज दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका. 1638 में बैक होम शाहजहां ने दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाना स्टार्ट किया था. हाँ जी, ये वही आइकॉनिक फोर्ट है जहां से पीएम स्पीच देते हैं. 1937 में बीबीसी ने दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वाइड रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था. इमेजिन वो आरजे बोल रहा होगा, माइक चेक, और आज देखो हम यहाँ पर वाइब्स चेक कर रहे हैं. 1967 में द जिमी हेंड्रिक्स एक्सपीरियंस ड्रॉप्ड देयर डेब्यू एल्बम. आर यू एक्सपीरियंस्ड? अरे भाई, हम तो बस एक्सपीरियंस्ड ही रहते हैं. और आज है इंटरनेशनल नर्सेस डे भी, ऑनरिंग द लेजेंडरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. मैसिव लव टू ऑल द नर्सेस आउट देयर, यू गाइज आर सुपर हीरोज. और आज का लेसन, हिस्ट्री हो या लाइफ हो, ड्रामा मिर्चीदार होना चाहिए. इसलिए फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर ड्रॉप इन योर मैसेजेस. 9033 मिर्ची इज माय नंबर. दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार गाने लगाते तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

A30M मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। 92.7 FM।

हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। आरसीबी के बैटर टीम डेविड को लगा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस कर देना इज ओके, बट आईपीएल सेट बेटा कैमरा सब देख रहा है। आफ्टर आरसीबीज विन अगेंस्ट एमआई ऑन संडे, टीम डेविड वॉज फाइंड 30% ऑफ हिज मैच फी बिकॉज ही फ्लैश्ड हिज मिडिल फिंगर ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस। अरे भाई, विक्ट्री पोस्ट था ये, इमोशनल डैमेज काहे ले लिया। आईपीएल ने बोला है कि उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आर्टिकल 2.6 ब्रेक करने पर ये सजा मिली है, विच बेसिकली मींस जेस्चर्स जो ऑब्सीन, ऑफेंसिव या इंसल्टिंग हो वो नो बॉल कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ फाइन ही नहीं, दो डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल गए उनको, मतलब उनकी रिपोर्ट फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन ऑनेस्टली यार, स्पोर्ट्स में कभी कभी ना एड्रेनलिन हावी हो जाता है प्लेयर्स पर। एक सेकंड तुम काम एंड कंपोज्ड हो एंड अगले ही सेकंड यू आर एक्टिंग ऑल वॉलेटाइल। मीनवाइल एमआई वर्सेस आरसीबी में एमआई तो बाहर हो गया और राइवलरी ने काफी जोर पकड़ लिया है। एमआई फैंस का दिल टूट गया है, लेकिन ये गेम है, इसमें एक टीम हारेगी तो दूसरी जीतेगी। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे हुडी पे भरोसा रखने वाले देसी पीपल, दिस इज योर गर्ल प्रिसिला विद यू, सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चाय गर्म है या वेदर, लेट्स फाइंड आउट। अभी फिलहाल हो रहा है 44 डिग्री फारेनहाइट, इट्स क्लियर आउटसाइड, लेकिन विंड जो है वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखाते हुए हमें फील करा रही है 42 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। लेकिन वेदर कह रहा है क्यूट जैकेट तो पहन ही लो आज के दिन। गुड न्यूज दो ये है कि पूरा दिन क्लियर स्काइज रहने वाला है, यानी नो रेन का ड्रामा, नो सरप्राइजेज, अम्ब्रेला कैरी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में जीरो प्रेसिपिटेशन था और अगले 24 आवर्स में भी जीरो प्रेसिपिटेशन है। आज का टेम्परेचर रेंज रहेगा 44 डिग्रीज फारेनहाइट से 67 डिग्रीज फारेनहाइट तक। सो सुबह सुबह तुम वेयर आर माई ग्लव्स वाले मोड में रहोगे और आफ्टरनून आते आते व्हाई एम आई स्वेटिंग इन माई स्वेटर वाली एनर्जी आ जाएगी। वैसे आज का हाई इज एक्चुअली वार्मर देन यस्टरडे, कल का मैक्स गया था 62 डिग्रीज फारेनहाइट तक और आज जाने वाला है 67 डिग्रीज फारेनहाइट तक। सो आज भी लेयर के प्लेयर बनना है गाइज। देसी मॉम्स हमेशा हमें वार्न करती कि बेटा स्वेटर पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। आज उनकी बात सुननी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड ऑफ कोर्स बाहर निकलते वक्त अपना सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ लगाकर ही जाना है। अभी मिर्ची सुनते रहना है और मुझे फॉलो करना है, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे ढूंढो, और व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Candy.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi Brigade. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Welcome to Mirchi Hour का 3.
2: Mirchi Hour का 3.
1: अव्वल नंबर पर ब्राजील में लैटिन अमेरिका का पहला कंसेक्रेटेड लॉर्ड गणेशा आइडल ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ ड्यूरिंग अ ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी एट सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्या. इंडियन एम्बेसडर दिनेश भाटिया और ब्राजीलियन स्पिरिचुअल टीचर जोनस मसेटी भी इवेंट में प्रेजेंट थे. नंबर टू पर ईरान ने ऑफिशियली सपोर्ट किया चाइना प्रेजिडेंट शी जिनपिंग के 4 points पीस प्रपोजल को एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट रीजन. ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रेजा रहमानी फाजल ने इनको लॉन्ग टर्म पीस और डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क कहा है. एंड नंबर थ्री पर रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन यूएस फीलिंग्स आर क्रिएटिंग डिस्कशन अराउंड क्लेम्स मेड रिगार्डिंग सीजफायर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेडली शो मल्टीपल आउटरीच इंटरक्शंस बिटवीन पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूएस लिंक्ड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. एज ऑलवेज गाइज, इंटरनेशनल मैटर्स आर कॉम्प्लेक्स, सो हेडलाइन से पहले कॉन्टेक्स्ट को जरूर पढ़ लेना. एंड दैट वाज मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Nechi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vieja la murga. Nechi, murga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी?
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
13: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
17: June 2nd, 2026, अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st। Sujit Singh is the change we need.
16: Paid for by Sujit Singh for Congress.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
19: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड यूर ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स। तो आज का बॉलीवुड बज ये है कि ऑथर अमीश त्रिपाठी ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि रणवीर सिंह ने अब तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ट्रिलॉजी के राइट्स परचेज नहीं किए हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया ने फिर कमिंग सून टू कंफर्म ब्लॉकबस्टर बना दिया था इसे कुछ दिन पहले। अमीश का कहना है कि शिवा ट्रिलॉजी के राइट्स अभी भी उनके पास ही हैं एंड नथिंग हैज बीन साइंड विथ एनीवन एज येट। He also mentioned कि he has a huge respect for Ranveer Singh. So basically यहाँ पर कोई controversy नहीं है, लेकिन imagination का overacting चल रहा है netizens का, जिसको उन्होंने clear कर दिया है। Earlier reports कह रहे थे कि रणवीर लॉर्ड शिवा का role play करने वाले हैं in the proposed adaptation of the book. और तुमको पता है fans ने already teaser trailer दिमाग में edit भी कर दिया था। Slow motion entry हुई त्रिशूल, wind machine, background chanting के साथ। काफी cinematic था ट्रेलर, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड की न्यूज में रिपोर्टेडली वर्ड को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट जो है ना हमारे उस दोस्त की तरह होता है जो कहता है आई हर्ड इट फ्रॉम समवन एंड सडनली पूरे मोहल्ले को एक खबर मिल जाती है जो कि सही भी नहीं होती है। वैसे इमेजिन करो कि ये मूवी एक्चुअली बने और रणवीर सिंह इस कैरेक्टर को प्ले करें तो टिकट्स कितनी जल्दी बिकेंगे और क्या ये मूवी धुरंधर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. और अब टाइम आ चुका है लाइफ को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है. आज तुम ऑफिशियली शेयर कर रहे हो अपना स्पेशल डे विद सम सीरियसली आइकॉनिक लोग, जैसे कि ऑस्कर विनिंग एक्टर रामी मलिक. ऑल्सो बर्थडे ट्विंस में है मेलन एकमैन, बेटर कॉल सॉल स्टार रिया सियोन एंड जेसन बिग्स फ्रॉम अमेरिकन पाई. बेसिकली आज के बर्थडे स्क्वाड इज वन बिग बिंज वर्दी रिकमेंडेशन. और हमारे देसी सेलिब्रिटीज में है एक्ट्रेस अदा खान, एक्टर फ्रेडी दारूवाला, रेसलर प्रियंका फोगाट एंड क्लासिकल सिंगर अरुणा साईराम. एंड साथ में आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड कॉमेडी लेजेंड जॉर्ज कार्लिन. सो आज के दिन अगर तुम भी इस धरती पर प्रकट हुए थे, यू आर बेसिकली mix of brains, heart and a lot of humor. तो आज खुद को treat करो, cake खाओ, overthink बिल्कुल मत करो, calories की चिंता मत करो and of course सुनते रहो मिर्ची मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. This is Mirchi Mornings. मुझे connect करो insta और x पर, मेरा handle है Mirchi Pris and whatsapp पर मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Oh God, one more.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and let's check out the gold and silver का rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold trading at $4,700 per troy. $4,700 per troy के साथ आज सुबह gold की prices stable हैं. सिल्वर ट्रेडिंग अराउंड $84 पर ट्राउंस के साथ सिल्वर के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड पर हैं. गोल्ड बार्स सिल्वर बार्स पैम्प सर्टिफाइड 1 ounce 100 grams किलो बार्स रेडी एट राज ज्वेल्स. कम इन्वेस्ट इन गोल्ड विद RajJewels.com. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: And there you have it, gold and silver का rate update. जल्दी जल्दी plan कर लो अपनी jewelry shopping या investment. और फिलहाल मुझे follow करो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and WhatsApp पर मेरा number है 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my hustlers. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This is मिर्ची मॉर्निंग्स और यहाँ पर अब चलने वाला है मिर्ची आवर का थ्री। अपडेट नंबर वन, लखनऊ के ज्वेलरी ट्रेडर्स फुल टेंशन मोड में आ चुके हैं क्योंकि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपील किया जहां उन्होंने लोगों को वेस्ट एशियन टेंशन्स के बीच गोल्ड परचेजेस पोस्टपोन करने को कहा है, इनफैक्ट नहीं खरीदने को कहा है। सराफा ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। उनका कहना है कि अगर लोग गोल्ड शॉपिंग रोक देंगे तो ज्वेलर्स और वर्कर्स पे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकता है और इंडियन वेडिंग्स का इमोशनल डैमेज हो सकता है। नंबर टू पर NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया है ड्यू टू पेपर लीक एलिगेशंस। एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, एडमिट कार्ड्स जो है वो दोबारा से इशू किए जाएंगे और केस की इन्वेस्टिगेशन CBI करने वाली है। ऑनेस्टली यार, इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइटिंग सिलेबस, स्लीप डेप्रिवेशन और रिलेटिव के ताने, और इस सबके बीच में पेपर लीक के प्लॉट ट्विस्ट भी हो जाते हैं। और नंबर थ्री पर इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्लिप्ड बिलो 3% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years, व्हाइल रुपी टच्ड अ रिकॉर्ड लो अराउंड 95.56 अगेंस्ट द डॉलर एमिड ग्लोबल टेंशन कंसर्न्स। सो माय पीपल, इसका मतलब ये हुआ कि आज रफली एक US डॉलर इज अराउंड 95.5 रुपीज। मतलब अगर तुमने घर पर $100 भेजने हैं तो घर वाले बहुत खुश होने वाले हैं। ऑल्सो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर क्लाइमिंग टू, सो इन्वेस्टर्स आर वॉचिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स वेरी क्लोजली। ट्रांसलेशन इसका यह है कि इकोनॉमी फिलहाल हमसे थोड़ी सी रूठी हुई है। अभी चलाते हैं मिर्चीदार गाने इसी बात पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
13: Tera kya hoga Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
4: Mirchi, fresh maal.
16: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
17: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
16: Add it, turn it up, don't sit now. Just go wow.
17: Wow!
18: Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
3: गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज राशि जोन नंबर 1 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
4: मिर्ची राशि जोन
3: इट इज यानी मेष राशि। आज किसी कोवर्कर की जलसी रेडार पर है। स्टे शार्प एंड अवॉइड अननेसेसरी ड्रामा ट्रैप्स। बेसिकली वर्कप्लेस में निंजा टर्टल मोड ऑन कर लो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बोर्डम आज तुम्हें रैंडम डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से दूर रहो वरना 2 बजे रात को यूकेलेले ऑर्डर हो जाएगा। लकी कलर इज कोरल। लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज किसी के साथ ओपिनियंस मैच नहीं होने वाले एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एवरी डिबेट डजंट need to be a TED talk. Aaj ke din peace choose karo. Lucky color is mint color. Lucky number is 11. Cancer yani kark rashi, sab advice gold nahi hoti, okay? Aaj thoda research khud karo before trusting people blindly, especially crypto experts. Lucky color is white color. Lucky number is 27. Leo yani ki sinh rashi, cloudy mood ko today consciously flip karo. Smile thoda sa fake bhi ho to bhi start karo, eventually real ho hi jayega. Lucky कलर इज सनफ्लावर कलर। लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, फार अवे प्लेस से गुड न्यूज आ सकती है। मे बी मनी, मे बी अपॉर्चुनिटी, मे बी मम्मी फाइनली कहेगी कि बेटा थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। लकी कलर इज प्लम कलर। लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट 6 राशिज इन राशि जोन। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ऑफ कोर्स राशि जोन नंबर टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, आज अगर किसी अथॉरिटी फिगर से डिसएग्री करना है तो फैक्ट्स रेडी रखो। मुझे वाइब आ रही है इज नॉट लीगल एविडेंस स्वीटहार्ट। लकी कलर इज रोज कलर। लकी नंबर इज 8। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज इमोशनल रिएक्शन से ज्यादा स्मार्ट कम्युनिकेशन काम आने वाला है। सैवेज होना टेम्पटिंग है, लेकिन क्लासी सैवेज होना ज्यादा पावरफुल होता है। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लैक। लकी नंबर इज 31। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वर्क स्पॉटलाइट आज डायरेक्टली तुम पर ही है। रूल्स फॉलो करो एंड डोंट ज्वाइन अननेसेसरी ऑफिस सर्कस। पॉपकॉर्न खाओ, खुद जान जाओ, मंकी मत बनो। लकी कलर इज कॉपर कलर। लकी नंबर इज 14। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रायोरिटीज पे फोकस करो। हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद कस्टमर सपोर्ट मत बन जाओ। आज थोड़ा सेल्फिश होना अलाउड है। लकी कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन। लकी नंबर इज 6। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कॉलीग्स की मिस्टेक पब्लिकली पॉइंट आउट करोगे तो लॉन्ग टर्म ऑकवर्डनेस फ्री मिलने वाली है। प्राइवेट काइंडनेस टूडे इज इक्वल टू फ्यूचर फ्रेंडशिप। लकी कलर इज आइस सिल्वर। लकी नंबर इज 25। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, वर्ल्ड का स्ट्रेस अब्सॉर्ब मत करो यार। आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा लव, थोड़ा सा होप और थोड़ी सी सॉफ्ट वाइब्स क्रिएट करो। डूम स्क्रोलिंग से एनलाइटनमेंट नहीं मिलता मेरी जान। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 2। And that's it for your Rashi Zone number 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This is Mirchi Mornings. And Insta और X पर मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर करो। मेरा हैंडल नेम है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देवियों और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
2: मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड बिफोर यू स्कोल मी फॉर दिस रियली बैड अमिताभ बच्चन मिमिक्री, लेट मी टेल यू कि रिसेंटली उन्होंने अपनी फैन मीटअप में एक बात कही। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को स्पेसिफिकली बोला टू बिहेव प्रॉपरली विद फैंस एंड वेल विशर्स, बिकॉज इन हिज वर्ड्स द पब्लिक इज आवर गॉड, एंड ऑनेस्टली दैट इज सुपर स्टार एनर्जी, हैशटैग रिस्पेक्ट। एंड अमित जी ऑल्सो मेंशनड दैट हिज सिक्योरिटीज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिम टू, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेवल इनकी हाइट के बराबर है उनका। मीनवाइल हम तो यार कभी कभी कस्टमर केयर से बुरी तरह बात कर ही लेते हैं, बट सीरियसली हम सबको फीलिंग तो पता ही है यार, वेदर इट्स आर्टिस्ट, रेडियो होस्ट, क्रिएटर्स या चाय वाले अंकल बैक होम, पीपल रिमेम्बर हाउ यू मेक देम फील, एंड काइंडनेस इज ऑलवेज फ्री। सो आज का टेक अवे है, बी नाइस नो मैटर व्हाट द रीजन इज, से थैंक यू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्माइल करो, बिकॉज स्माइल गोज अ लॉन्ग वे। एंड मे बी गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। बिना कॉन्टेस्ट के भी कभी मुझे मैसेज कर दिया करो। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोलो तो प्रिसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं पर खत्म हुआ, मिलूंगी कल तुम्हें सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी, तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो एंड चिल मारो, लेकिन मिर्ची सुनते जाओ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि फोन में देखकर बात कर, नहीं तो बॉस पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, स्कूल में हम ऐसे जरूर बात किया करते थे कि बुक में देखकर बात कर, नहीं तो टीचर देख लेगी।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And well, ये बात सच है कि ऐसा भी एक जमाना हुआ करता था जिसे अब हम शायद ही जी पाएंगे, जहां हम अपने दोस्तों से इस तरीके की बातें किया करते थे ताकि टीचर्स हमें पकड़ ना लें, उनको लगे कि हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन को लेकर सीरियस होना चाहते थे। तो किताब, जो यूजुअली हमारे लिए ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आई मीन पीरियड खत्म होने के बाद या घर जाने के बाद, वी नेवर वुड want to open a book and talk to each other. But हाँ, of course, अपने आप को बचाने के लिए, so that हमें punishment ना मिले, डांट ना पड़े और हम बात भी कर पाएं और मैम को भी लगे कि यार हम पूरा ध्यान दे रहे हैं अपनी किताब के अंदर। Book used to be our option. Basically, book used to be our escape, हाँ? लेकिन फोन हमारा एस्केप कभी नहीं बन सकता। फोन वो साथी नहीं जो किताब हुआ करती थी बाबू मुशाय। ये उन दिनों की बात है जब हम बुक रीडर्स हुआ करते थे, अब तो हम टैब रीडर्स और फोन रीडर्स हो गए हैं। तो फिर चले क्या उसी जमाने में, मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल दूं? आपसे बोल देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Muppet Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La pipa, la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501.
2: हेलो.
4: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
2: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं कुकड़ू को.
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Pyari brides, kya dhoondh rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
12: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
11: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
13: Jai Gurudev. Gayatri Chetna Center, Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage Virat Deep Yagna. Ravi 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांतकुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरुदेव.
14: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जद एक दूजे दे नाल काम ना करे.
15: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
16: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
17: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
19: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
18: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ देने वाली ये जो अदा है ना, आपको क्या लगता है गदर से आई है? अजी नहीं, इसकी शुरुआत तो बॉर्डर मूवी से ही शुरू हो गई थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड सनी देओल। By God, पग में इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं तो तब बच्ची थी जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, लेकिन एक पल के लिए मेरे दिल में भी ख्याल आया, यार ये तो हैंडसम है हीरो। और बॉर्डर में सनी देओल के वो जो पावरफुल डायलॉग्स थे और उस पे उन्होंने जो अपनी एक्टिंग का पावर लगाया था, वो इतने लेजेंडरी बन गए कि उनकी एक इमेज बन गई ऑफ अ पेट्रियोटिक हीरो, और वहीं से शुरू हुआ उनका हैंडपंप उखाड़ देने वाला सफर, गदर से नहीं। लेकिन सनी देओल ने मेहनत भी बहुत की थी। हाँ, उन्होंने रियल आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ली थी सो दैट ही कुड गेट इनटू हिज कैरेक्टर, स्पेशली टैंक ऑपरेशंस और कमांड्स के बारे में जानने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी थी एंड उस कोशिश में सफल भी हुए थे। जहां सनी देओल ने अपना कैरेक्टर पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करी थी, वहीं अक्षय खन्ना, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी, उनको बड़ी डिफिकल्टी हुई थी शूटिंग करने में, स्पेशली इमोशनल सीन्स, क्योंकि उस टाइम पर वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे। आज की बात तो अलग है, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने उनका जो डेथ सीन था ना, उसको शूट करने के लिए काफी सारे टेक्स लिए थे क्योंकि वो उस कैरेक्टर में आ ही नहीं पा रहे थे यार, बट इवेंचुअली आ गए। एंड उनका डेथ सीन एज वेल एज सुनील शेट्टी का डेथ सीन इन द मूवी वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बॉर्डर देखा होगा और रोया नहीं होगा। इस मूवी को नेशनल लेवल पे इतनी तारीफें और अप्लॉड्स मिले थे फॉर प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी कि इस फिल्म को इवेंचुअली काफी सारे इंडियन स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दिया गया था। वो अलग बात है कि तब हमारे घर वाले जो थे वो हमें थिएटर में ले जाकर मूवीज नहीं दिखाते थे और ज्यादातर हम VCR पे ही मूवी देखते थे, तो हमने ये फिल्म भी VCR पर ही देखी, टैक्स फ्री इंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये फिल्म सबने जरूर देखी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Namaste, Islam and Sat Sri Akal, bhaiyo aur behno. I'm Sujit Singh running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
4: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
3: Paid for by Sujit Singh for Congress.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपको पता है बॉर्डर मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये बात सच है कि बॉर्डर फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय द बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो कि 1971 में लड़ी गई थी. और इस फिल्म की इंस्पिरेशन इनफैक्ट जेपी दत्ता की पर्सनल लाइफ से भी आती है. जेपी दत्ता ने ये फिल्म बनाने का सोचा एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर, जो कि 1971 की इस वॉर में शहीद हो गए थे. और इस फिल्म को जितना ऑथेंटिक हो सके उतना ऑथेंटिक बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने इंडियन आर्मी वेटरन्स जिन्होंने इस बैटल में फाइट लड़ी थी उनसे कंसल्ट किया था. इनफैक्ट प्रोडक्शन टीम ने जो यूनिफॉर्म्स और टैंक्स लिए थे ना, वो भी रियल आर्मी वाले यूनिफॉर्म्स और टैंक्स थे. हालांकि इस फिल्म की जो कास्ट थी वो बहुत बड़ी थी. सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट, सो मेनी एक्टर्स. और इनके अलावा और भी कई सारे मंजे हुए खिलाड़ी थे अपनी अपनी फील्ड के, यानी कि एक्टिंग के, जो कि इस फिल्म में कास्ट किए गए थे. लेकिन जिस चीज ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बनाया था, दैट वॉज द डेडिकेशन एंड द ऑथेंटिसिटी एंड द पेट्रियोटिज्म. इस फिल्म की शूटिंग हुई थी राजस्थान बीकानेर में, जहां पर गर्मी और सैंडस्टॉर्म्स इतने खतरनाक होते हैं. एंड ये वो टाइम था जब वैनिटी वैन्स भी नहीं हुआ करती थी. लेकिन स्टिल द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म, उन्होंने इन सारी सिचुएशंस में भी इस फिल्म को शूट किया. क्योंकि जब वॉर चलती है ना, तो वो गर्मी, सर्दी, बारिश ये सब नहीं देखती है. हमारे सोल्जर्स डटे रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री. और उसी जोश के साथ इस फिल्म को भी शूट किया गया था. एंड इवेंचुअली बॉर्डर ने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते थे. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: वेल, इन अ वर्ल्ड जहां पर जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस की शादी होती है तो हमें ये पता होता है कि उस इंसान ने अपने हल्दी मेहंदी पे क्या पहना, अपनी शादी में क्या पहना, रिसेप्शन में क्या पहना और क्या क्या फंक्शंस हुए, यू नो एवरी डिटेल वी गेट टू सी एंड नो ऑन इंस्टाग्राम या फिर मीडिया तो है ही कवर करने के लिए। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी शादी है जिसके बारे में आज तक किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि रानी के लहंगे का कलर क्या था। यार
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यस, रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा की जो लाइफ है और उनकी जो शादी है ये आज तक नहीं पता लगा कि चल क्या रहा था और क्या चल रहा है। ये दोनों ही इतने प्राइवेट लोग हैं ना। वेल, आई रियली लाइक दिस अबाउट देम एज वेल। लेकिन हाँ, एक डिटेल जरूर पता लगी है रिसेंटली। सब्यसाची ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया, जग जाहिर कर दिया इनफैक्ट, कि यू नो यूजुअली ही वर्क्स फॉर एक्ट्रेसेस, उनके लहंगे, उनका ब्राइडल कुटोर एंड एवरीथिंग। लेकिन बहुत टाइम पहले से ही सब कुछ पता होता है तो उनके पास टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। लेकिन रानी मुखर्जी की शादी जो थी वो बड़ी चैलेंजिंग थी उनके लिए, बिकॉज देयर वाज दिस वन डे व्हेन रानी मुखर्जी जस्ट वॉक्ड इन टू हिज बुटीक एंड यू नो शी जस्ट सेड रैंडमली कि यार 5 दिन के अंदर तुम्हें मेरा लहंगा बनाना है एंड ये लहंगा मेरी शादी का लहंगा है। एंड यू नो दैट टाइम वॉज अ टाइम फॉर सब्यसाची विच वॉज क्रेजी एंड चैलेंजिंग एज वेल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा इसी बात के साथ कि सबसे ज्यादा मजा भी इसी काम में आया क्योंकि इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड एंड ही वॉज डूइंग सम वर्क जो कभी कहीं नजर ही नहीं आएगा। उन्हें ये बात पता भी नहीं थी क्योंकि आगे जाके आज तक भी किसी को नहीं पता कि यार रानी मुखर्जी असल लाइफ में दुल्हन बनकर कैसी लगी होंगी। आई एम श्योर जस्ट लाइक हाउ शी लुक लाइक अ ब्राइड इन हर मूवीज एक्टिंग करते हुए। लेकिन हाँ, वो जो चेहरे पर एक ब्लश होता है, एक चमक होती है, एक शर्माने वाली अदा होती है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा निकल कर आई होगी और नेचुरली निकल के आई होगी। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज़ दिस।
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
3: कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
12: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
13: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Silbatta,
2: Yaadon ko chitthi.
1: लाल मेरे दिल का हाल था और लगता तुम पर कमाल था। मेरी नानी के घर में तुम लाल रंग के थे और मैंने तुम्हें उसी रंग से पहचाना है। हालांकि लेटर ऑन मुझे पता लगा कि तुम टैंड लुक यानी कि ब्लैक कलर में भी आते थे। एनीवेज इट्स नेवर अबाउट द कलर, लेकिन इट वाज डेफिनेटली अबाउट हमारे घर का खाना जो तुम पर मसाले पिसने के बाद स्वाद में निकल कर आता था विद फ्लाइंग कलर्स। तुम्हारी वो भारी भरकम पर्सनालिटी जो रसोई के एक कोने में टिका करती थी और हर सुबह कामवाली मासी तुम पर नाना अब्बा के लिए ड्राई फ्रूट्स पीसा करती थी। उस टाइम पर तो रसोई में तुमसे ज्यादा कोई बिजी नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक बार ड्राई फ्रूट्स का काम हो जाता था उसके बाद फिर मसाले पीसे जाते थे और फिर फ्रेश चटनी। ओए होए, तुम्हारे ऊपर पिसी हुई धनिया, मिर्ची, लहसुन, इन सब की खुशबू ना आज भी मेरी नाक में बसी हुई है। वो टेस्ट जो तुम्हारे हाथों से निकले मसालों में होता था, आज की मिक्सी वाले मसालों में कहाँ होता है यार। हालांकि आज अगर ये बात कोई मर्द कह दे तो उसे एंटी फेमिनिस्ट कहा जाएगा, जबकि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ टेस्ट की बात है यार। जब मम्मा तुम्हारे ऊपर चटनी पीसा करती थी ना, तब हम बच्चे पास में बैठकर उंगलियां चाटते थे और इंतजार करते थे कि कब एक कटोरी चटनी मिले। तुम्हारे साथ वो टेस्ट और वो घटघट वाली आवाज भी चली गई यार, जो अब कभी लौट कर तो नहीं आएगी। तुम सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थे, तुम रसोई घर की रूह थे और तुम्हारे टाइम पर किचन को हम रसोई घर ही बोला करते थे। शायद तुम्हारा पर्सनल टच एक कमरे को घर का एहसास दे देता था। तुम्हारे आसपास न जाने कितनी बातें, कितने गाने, कितनी कहानियां गूंजा करती थी। आज जब सब कुछ मशीनों ने टेक ओवर कर लिया है ना, तब तुम्हारी सादगी और अपनापन बहुत याद आता है। तुम्हारे पिसे हुए स्वाद को याद कर दी तुम्हारी फूडी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs and feel isolated and helpless? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
5: Listener MI, back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज में ताल मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये आवाज इस गाने में आदित्य नारायण ने निकाली थी, और वो जो बच्चे का जितना भी पार्ट है ना, वो सब आदित्य नारायण ने गाया था। सोचो जरा, ये भी कभी इतने छोटे हुआ करते थे। लेकिन इस गाने की बड़ी सही बात ये है कि ये जो गाना है ना, ये बिल्कुल सच बोल रहा है यार, कि यार कहीं आग लगे लग जाए, कहीं नाग डसे डस जाए, लेकिन ये जब दिल टूटता है ना और इसमें जो दर्द होता है ना, वो नहीं सह सकता यार इंसान। बाकी सारी चीजें तो हम झेल लेते हैं वाकई में, ऑन अ डेली बेसिस कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो बाय गॉड दुनिया रुक जाती है यार, किसी के लिए कुछ महीनों के लिए, किसी के लिए कुछ दिनों के लिए, तो किसी के लिए कुछ सालों के लिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं यार, जो एक चक्के में पूरी जिंदगी के लिए अटक के रह जाते हैं। भले ही उनके लिए दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन वो जो मोहब्बत उन्होंने कभी की थी ना सच्चे दिल से, और जिसमें उनका दिल टूटा था, वो आज तक रिपेयर जोन में नहीं आ पाया है, बस जीना सीख लिया है। तभी तो कहे कि जाए जा ना जाए जिया। यार ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि यार जान चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिल गया ना भाई, तो बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। दुनिया कैसी हो जाती है यार, क्योंकि क्या है ना कि प्यार खूबसूरत भी बहुत होता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक डर होता है, और यू नो कभी कभी ऐसा होता ही है हमारे साथ कि यार वो डर हमारा सच हो जाता है, तो वो दर्द भी होता है, यानी कि डर दर्द में तब्दील हो जाता है। ओए होए होए होए होए होए, ऑल द बेस्ट है जी, अगर आपने नया नया प्यार किया है, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज एज वेल जो ऑलरेडी प्यार से डील कर रहे हैं, जो उतार चढ़ाव से डील कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि प्यार से डील करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्रेकअप से डील करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल द बेस्ट टू यू, और इसी के साथ जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.

हाय हाय हाय हाय, क्या गाना है। और ये गाना ना मैंने आपकी तरफ से खुद को डेडिकेट कर दिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पिछले 2 हफ्ते से मैं ये पुरानी जीन्स शो होस्ट नहीं कर रही थी और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया एंड आई वाज सो टच्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड कि आपने मेरा हाल चाल पूछा कि मैं शो पे क्यों नहीं आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दोज स्वीट मैसेजेस। एंड अगर आप मुझे गाने के फॉर्म में पूछें कि मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तो मैं कहूँगी कि वेकेशन की, बहुत मज़ा किया। और अब गाने की बात छिड़ी गई है तो गाना सुन लेते हैं, राम लखन फिल्म का पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
4: हाँ जी बोलिए।
5: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
4: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
6: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
4: कौन बोल रही है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
4: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
7: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
4: हेलो कौन बोल रहा है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
4: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
6: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
4: हेलो मैडम।
5: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहा
5: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
4: अभी कोई और बोल रही थी।
5: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
4: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
8: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: कौन बोल रहा है?
5: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
4: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
9: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
4: कौन बोल रहा है भैया?
5: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
4: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
10: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
5: आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
11: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
12: थैंक यू।
13: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
14: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
15: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
19: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
16: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi. Only on Mirchi.
4: Purani Jeans. Main aur meri tanhai aksar ye baatein karte hain. तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, कुछ को बीचेस पसंद होते हैं, कुछ को दोनों पसंद होते हैं, लेकिन बात अगर घूमने की आती है तो दोनों जगह घूमने के पैसे भी सेव होने चाहिए पूरे साल में। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो एक ही वेकेशन के पैसे सेव कर पाते हैं, तो एक जगह जाने की बात हो तो फिर मैं पहाड़ों पे जाती हूँ। और क्योंकि मैं मई के महीने में घूमती हूँ, मई मेरा बर्थडे मंथ होता है, तो फिर पहाड़ों में जाना ही पसंद करती हूँ। एक्चुअली बीचेस पे जाना मैं इसीलिए भी नहीं प्रेफर करती थी कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था यार, बचपन से ही। मतलब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, बड़ी हिम्मत करके मैंने 2 साल पहले स्विमिंग ऐसे सीख ली, मतलब काम चलाऊ सी। तो एक दो बीच वेकेशन मैंने की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस पूछी जाए और पैसे वाला मामला भी कंसिडर किया जाए तो यस, माउंटेन्स फॉर श्योर। और इस साल मैं कौन से पहाड़ों में घूम कर आई हूँ मैं आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये गाना शेयर कर रही हूँ जिसमें कितनी सुंदर पहाड़ों वाली फील है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
8: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं अपने निकम्मे दोस्तों पर डिपेंडेंट थी, अब मैं काफी इंडिपेंडेंट हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं ट्रैवल प्लान्स की बात कर रही हूँ। एक टाइम था जब मुझे ऐसे लगता था कि ट्रैवल तो भाई फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, अकेले सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं लोग, और आज मैं वही लोग बन गई हूँ। कुछ लोग सोलो ट्रैवल बाय चॉइस करते हैं और कुछ बाय सर्कमस्टांसेस करते हैं। तो मैंने बाय सर्कमस्टांसेस सोलो ट्रैवल करना शुरू किया और अब ये मेरी चॉइस बन गया है। मतलब कुछ 5-6 साल हो गए मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। और एक्चुअली पता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो वो सोलो ट्रैवल रहता नहीं है, क्योंकि आप इतने नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, वो बहुत ही औसम हो जाता है। और हर साल अराउंड माय बर्थडे मई के महीने में मैं घूमने जाती हूँ पहाड़ों में। इस बार मैं कहाँ गई, क्या किया, बताऊंगी। फिलहाल ये गाना जो मुझे ऐसे लगता है सोलो फीमेल ट्रैवलर्स का सॉर्ट ऑफ एंथम, इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Inefficient,
2: very complex,
3: clumsy और
4: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि कैसे बाय सर्कमस्टांसेस मैं एक सोलो ट्रैवलर बन गई और अब मैं बाय चॉइस सोलो ट्रैवलर हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बल्कि अब मैं वो दोस्त बन गई हूँ कि कोई दोस्तों का ग्रुप प्लान भी बन रहा होता ना ट्रैवल का, तो मैं वो प्लान खराब करती हूँ बोल के कि मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना होता है। और एक्चुअली अकेले कहाँ होता है, यू नो, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आप इतने लोगों से मिलते हो कि कई बार उनके साथ ग्रुप ट्रैवल ही हो जाता है, पर वो दोस्तों के साथ वाले ग्रुप ट्रैवल जैसा नहीं होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही नए लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो। उनकी जिंदगी के बारे में आपको पता चलता है, लाइफ को लेके नए पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं। मैं तो खास करके इसीलिए कोशिश करती हूँ इन दिस मंथ ऑफ मे, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ होता है, मुझे लगता है मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नए रियलाइजेशंस होंगे, विजडम मिलेगी जो साल भर में खत्म हो जाती है, फिर मैं अगले साल रिचार्ज करने या उसे रिन्यू करने चले जाती हूँ। और वैसे मैं ऐसे काफी जगहें निपटा चुकी हूँ, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर वगैरह उधर सब। इस साल मैं हिमाचल में गई थी टू अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट, करती हूँ उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM
2: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

कई बार हम लाइफ में बहुत स्टक हो जाते हैं, नहीं? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा लगता है फंस गए, वही सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, वही विशियस साइकिल चल रहा होता है लाइफ का। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा था कुछ टाइम से। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक धर्मकोट नाम की जगह है, वहां पे काफी सारे योगा कोर्सेज हैं। तो उसने मुझे एक पर्टिकुलर योगा कोर्स सजेस्ट किया कि तू ये जाके कर, यू माइट फील बेटर। तो मैंने ये कोर्स किया 9 दिन का। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वाज एक्सपेक्टेड, वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट आई लर्न समथिंग न्यू। ऑल्सो ये जो जगह है ना धर्मकोट, इसकी क्या अमेजिंग वाइब्स हैं, करती हूँ इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
6: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
4: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
6: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
4: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
6: हाँ जी,
4: हाँ बोलिए।
6: 33501।
4: अच्छा
6: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
4: हेलो,
6: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
7: हाय।
6: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
7: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
6: धोबी से
7: पूछ लीजिए।
6: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
4: हेलो
6: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
8: ये बेल जा रही है।
6: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
4: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
6: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
4: हेलो
6: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
4: किस से पूछे जा रहे हैं?
6: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपका पासवर्ड।
4: क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
6: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
4: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
6: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
4: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
4: अरे खुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
10: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
11: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
13: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
14: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
15: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

आओ वापस चलें हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर साल अपने बर्थडे मंथ में, मई मंथ में, मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करती हूँ और इस साल में गई थी हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मकोट। एक्चुअली गई तो मैं एक 9 दिन का योगा कोर्स करने थी जो मेरे लिए 18 दिन का साबित हुआ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई लर्न समथिंग न्यू। एंड अदरवाइज इस जगह की बात करें अगर धर्मकोट की, छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन जहाँ की ना बहुत हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह हम बोल सकते हैं। एक तो ये योगा सेंटर्स है वहाँ पे बहुत सारे, मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, बहुत स्पिरिचुअल चीजें होती हैं ऐसी होलिस्टिक हीलिंग वाली, सूफी इवनिंग्स होती हैं, कवालियाँ होती हैं, कीर्तन होते हैं। तो मेरी जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज थी वो मीडियम तक तो पहुंच गई। तो आप भी कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो या आपको ऐसी किसी जगह जाना हो तो दिस इज द प्लेस। ऑल्सो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, खास करके फॉरेनर्स से, जिनके बारे में हम करेंगे बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

तो इस साल मैं अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर गई थी हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ट्रिप पे मैंने सिर्फ मजा मस्ती नहीं, काफी मेहनत भी की। मैंने 9 दिन का एक योगा कोर्स किया जहाँ पर मैं बहुत सारे फॉरेनर्स से मिली। देखो, लोग तो बहुत मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हो, लेकिन कुछ लोग आपको खास तौर पे याद रह जाते हैं। तो ऐसा एक बंदा था मतेओ, इटालियन गाय, ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब एक होता ना, किसी की स्माइल ऐसे दिल से आती है, जेन्युइन होती है, बिल्कुल कभी कोई प्रिटेंड नहीं करते वो लोग, वो वैसा था। और उसको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती थी, क्योंकि वो ही हमेशा स्माइल कर रहा होता था। उसके साथ एक स्पैनिश बंदा भी रहता था, वो इतना स्माइल नहीं करता था, लेकिन दोनों बहुत गुड लुकिंग थे। तो मैंने उनको सुंदर लड़के ऐसे बोलना सिखा दिया था कि तुम सुंदर लड़के हो, पंजाबी में भी सिखा दिया था, सोने मुंडे। और बदले में जब वो मुस्कुरा के मुझे चाओ बेलिसिमा बोलता था ना, यानी कि हाय ब्यूटीफुल बोलता था ना, तो आय हाय हाय हाय ओय होय होय होय हो जाता था। इसी बात पे मतेओ के नाम, वो इटालियन बंदे के नाम, ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वे साय तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

One of the most beautiful things about traveling is meeting new people. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस साल अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट, जहाँ पर मैंने काफी मेहनत भी की क्योंकि मैंने एक योगा कोर्स किया. एंड इस कोर्स में आई मेट दिस गर्ल कॉल्ड एलिसा, जिसकी लाफ्टर इतनी इन्फेक्शियस, कंटेजियस, क्या बोलेंगे, ऐसी थी ना, वो ऐसे ऐसे करके हंसती थी और आप उसको हंसता सुनो आपकी अपने आप हंसी निकल जाती थी. इतनी प्यारी बंदी वो बिलोंग करती है सिएटल से, जिस जगह पे मैं कभी गई नहीं, लेकिन आई हैव दिस स्पेशल अटैचमेंट टू दिस सिटी बिकॉज 90s से स्लीपलेस इन सिएटल मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है. आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है प्लीज देखो यार, इतनी प्यारी फिल्म है ना. ये पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन जो है वो मिलके भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब मिलते हैं तो एक दूसरे के हो जाते हैं. आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ. नहीं देखी है तो देखो स्लीपलेस इन सिएटल. फिलहाल के लिए ये गाना पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

मैं और मेरी ट्रैवल स्टोरीज। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस साल अपने बर्थडे वेकेशन पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट और वहाँ की स्टोरीज आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इस ट्रिप पे मैंने एक योगा कोर्स भी किया एंड वहाँ पे मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिली। एंड वन सच पर्सन वॉज मार्टिन, अमेरिकन गाय, मिड 60s में डॉक्टर, और योगा कोर्स तो वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ कर ही रहा था। अदरवाइज भी वो इतना एनर्जेटिक था भाई। हमारा ना योगा कोर्स बहुत टायरिंग था जो क्लासेस होती थी, लेकिन ये बंदा थकता नहीं था। वो क्लासेस के बाद भी हमारी तो टाइम टाइम फिस हो जाती थी। ये जाके एक्सप्लोर करता रहता था इतने कैफेज, कोई और वर्कशॉप हो रही है, कोई और क्लास हो रही है, वहां पे भी जाता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ही वॉज डूइंग, वो सीख रहा था इंडियन क्लासिकल डांस, ओडिसी डांस, क्योंकि 2 महीने बाद उसकी डॉटर की शादी है और उस शादी में वो ये इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करेगा। कि कितनी खूबसूरत बात होती है ना, आप किसी के कल्चर से कुछ सीख रहे हो, वो आपके कल्चर से कुछ सीख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स एवर। तो मार्टिन ने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और ये शादी के संगीत टाइप का गाना हम सबको खुश करने वाला है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, हर बार मैं सोचती हूँ इस बारे में बात ना करूँ, लेकिन इन चीजों के बारे में अगर बात न की जाए तो फिर वो सही बात नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कचरा फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, सिविक सेंस जिनमें नहीं है, जैसे चिप्स चॉकलेट खाया, रैपर पैकेट वहीं फेंक दिया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल वहीं छोड़ दिया। कितना टाइम और एफर्ट लगता है कि आप उन चीजों को अपने बैग में रख लें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने पास रख लें, और फिर जहां भी आपको डस्टबिन दिखे वहां फेंक दें। कितना ही टाइम एफर्ट लग जाता है। उसके बाद साउंड पोल्यूशन, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, ऊंची ऊंची आवाज करके गाने सुनते हैं, खा पी के हुल्लड़ करना, आधी आधी रात को चिल्ला रहे हैं। भाई वो जगहें जो हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, पहाड़ों की खास करके मैं बात कर रही हूँ, वो बहते पानी की साए साए करके जो हवाएं चलती हैं उसकी, पक्षियों के चहचहाने की, वो आवाजें सुनने की जगह है। शोर शराबा हुल्लड़ नहीं। आई होप लोग ये बात समझें, इन पे अमल करें। फिलहाल आप एक काम करें, ये गाना सुने पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 3:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
4: Purani jeans. Charu ke saath. Sirf Mirchi par.

जिंदगी के सफर में कई बार सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि ट्रैवल वाला सफर करना पड़ता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ट्रैवलिंग इज थेरेपी, इट्स मेडिसिन। और मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं तो एक टाइम पे ऐसी होती थी, मुझे लगता था भाई ट्रैवल तो फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, ऐसे सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर जब सर्कमस्टांसेस की वजह से अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, उसके बाद से तो अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। कई सालों से काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। हाँ, साल भर पैसा सेव करना पड़ता है, काफी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दैट ट्रैवल इज वर्थ इट। और अकेले ट्रैवल करना तो आपको इतना वाइजर बना देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ब्रेव बनाता है। कितनी सारी चीजें आप अकेले हैंडल करते हो, फेस करते हो, और सबसे खूबसूरत बात इतने सारे नए लोगों से मिलते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में। कोई अलग स्टेट के किसी बंदे से आप मिल रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के बंदे से आप मिल रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई दूसरी कंट्री आप घूमने गए हो, और कई बार उनसे मिलते मिलते खुद से भी मिल जाते हो। सो कीप ट्रैवलिंग, इसे आप ट्रैवल करने का साइन समझ लो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका ट्यूसडे की शाम में। वैसे दोस्तों, ट्यूसडे को ना हम वीक का अंडरडॉग भी कह सकते हैं, पर मजे की बात यह है कि दुनिया के कई कंट्रीज में ट्यूसडे इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ द वीक। मतलब आज का दिन सिर्फ काम के लिए ही नहीं, कामयाबी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और जब प्रोडक्टिविटी का प्रेशर हो तो एक शानदार शाम और भी जरूरी हो जाती है, और बस वही लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो ये शाम फुल है बॉलीवुड बीट्स, फिल्मी फील्स और आपके फेवरेट डेडिकेशंस के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस ट्यूसडे को ट्रेंडिंग विद द नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala.
1: Yabala.
0: Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, तो हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा
2: हूँ
3: आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
13: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
14: Are you a South Asian parent of a child with special needs looking for help that understands you and your culture? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens and inclusive events year-round.
15: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
16: Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
18: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
19: दोस्तों कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुम से ही बच जाए या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल राही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: दोस्तों, एडल्टहुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिम।
6: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों, एक वक्त था जब हम कहते थे बॉलीवुड वर्सेस साउथ, बट अब सीन बहुत ही सिंपल है, गुड सिनेमा वर्सेस बोरिंग सिनेमा। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल ना हर फिल्म एक ही एम के साथ बन रही है, बिगर रीच, वाइडर ऑडियंस। आफ्टर फिल्म्स लाइक RRR और पुष्पा द राइज, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि लैंग्वेज बैरियर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और इसीलिए आजकल के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो मल्टी लैंग्वेज में शूट हो रहे हैं, क्रॉस इंडस्ट्री कास्टिंग भी हो रही है और स्टोरी टेलिंग भी लोकल और ग्लोबल दोनों को टारगेट कर रही है। और इसलिए बहुत सारे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें एक फिल्म बनानी है, ये कहते हैं कि इंडिया का ग्लोबल पिच है ये और पूरे इंडिया को, एंड नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड को ये मूवी रीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी मूवी टेस्ट क्या है, बॉलीवुड, साउथ या मिक्स। और ऑनेस्टली बताना कि लास्ट कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें आप लैंग्वेज को भूलकर बस स्टोरी टेलिंग एंजॉय कर रहे थे। टेल मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मूवी का बहुत ही खूबसूरत गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: tracker.
1: This hour is brought to you by Raj Jewels.
2: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
3: मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सलूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहा है?
4: किस से? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
4: आता है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: नमस्ते इस्लाम एंड सस्त्रीकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
15: June 2nd, 2026, अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st। सुजीत सिंह इज द चेंज वी नीड।
14: रेड फॉर बाय सुजीत सिंह फॉर कांग्रेस।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची का।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: Good evening, Mitchell. This is your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work. I think the temperature crossed 70s and today the US market slide as CPI inflation rises. And surely you will see mortgage rates are also on the rise. Good news for first-time home buyers. The housing market, which has been on an absolute tear this year, is losing some of its exuberance. The number of homes available for sale inched up. Rising inventory, of course, gives home shoppers a little bit more breathing room, but don't mistake this for a housing crash. Demand from buyers still far outmatches supply. So friends, buying a dream home, advice is free. Pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.125%, 20-year fixed mortgage rate 6%, 15-year fixed mortgage rate 5.5%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. Many homeowners refinance because they want to get out of an adjustable rate mortgage. Folks, please call Lion Mortgage to explore the options to refinance and save money on interest and closing cost. Debt consolidation is another goal of refinancing. If you both have a first mortgage and home equity, combining the two mortgages into one fixed lower mortgage rate. And please call us for a free consultation because we are offering zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च चेस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
4: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हाँ, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था, और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी, और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6 पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है, और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक आर आईज ऑफ। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द, यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, the jano.
8: Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
10: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
11: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
12: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
9: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों, इतनी सारी न्यूज़ आती है, स्पेशली जियोपॉलिटिकल न्यूज़, और जब रात को मित्रों वाली आवाज़ आती है तो पता ही होता है कि कुछ ना कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो जो धमाके वहाँ हुए हैं उसके यहाँ पर क्या असर होने वाला है, चलिए पूछते हैं आज के इस गोल्डन आवर में हमारे गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल से। नमस्ते बॉबी जी, welcome to this wonderful evening.
2: Namaskar, happy evening to you, Siddhi ji. देखिए, दुनिया में कहीं भी घर का जब डेफिसिट बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करने के लिए इंसान को बुरे समय में हमेशा सोना याद आता है। तो मुझे लगता है कि जिस मुद्दे में आप बात करने वाली हैं, वहां भी कुछ सोने की ही बात हो रही है। So, दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं, गोल्ड के प्राइस $4,700, $4,700 पर ट्राई आउंस ट्रीट कर रहे हैं। और सिद्धि जी, जिस तरफ आपका सवाल जा रहा है उसके लिए मैं आपको पहले इशारा कर दूं, पूरी दुनिया में सोने का जो भाव है ना, वो हमेशा पर आउंस, पर ट्राई आउंस कैलकुलेट किया जाता है
1: जी।
2: और डॉलर के अंदर गोल्ड को हमेशा साथ में उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन, जो मैं समझ रहा हूं, मैं चाहूंगा आप अपने आप पूछें, लेकिन डॉलर की बहुत इंपॉर्टेंस है, डॉलर पूरी दुनिया में ट्रेड करा जाता है, तो गोल्ड की हमेशा तुलना उससे की जाती है। और इस समय आज के डेट में $4,700 पड़ रहा है सोने का भाव चल रहा है। कल से मार्केट थोड़ा सा हल्की सी अपवर्ड ट्रेंड पर है। हम चाहते हैं कि 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। इससे पहले आप सिद्धि जी की अनाउंसमेंट से, गोल्ड खरीदने की ना खरीदने की अनाउंसमेंट से रुकें। तो सिद्धि जी, मैं तैयार हूं आपके सवाल के लिए।
1: बिल्कुल बॉबी जी, जैसा कि आपने समझ ही लिया है, एक अनाउंसमेंट हुई थी कि मित्रों अब गोल्ड खरीदना थोड़ा कम करो। ये अनाउंसमेंट हुई तो इंडिया में है और ऑब्वियसली तब से खलबली मची हुई है। काफी सारे एनालिसिस भी हो रहे हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है। इवन दो वेडिंग सीजन आ रहा है, फिर भी गोल्ड बाइंग को डिस्करेज किया गया है इन इंडिया, तो उसका असर यहाँ पर यूएस के बायर्स के लिए क्या होने वाला है, यही मेरा आपके लिए आज का सवाल है।
2: वो आपने बोला ना, वो मित्रों, तो वो मित्रों वर्ड जो है, जब वो रेज होता है तो सबके एंटीने खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन आप अमेरिका में हो तो मित्रों, मैं ये बोलूंगा कि हमारे, वो आपने पंजाबी में गाना सुना है, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तो जितने दोस्त हमारे रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यूएस में इसका कोई फर्क नहीं होने वाला है, बल्कि इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डेफिसिट, अपने डॉलर रिजर्व को बचाने के लिए, बिकॉज जो दुनिया भर की क्राइसिस हो रही है उसके लिए उन्होंने चाहा है कि गोल्ड जो इंपोर्ट होता है इंडिया में उसको रोकने के लिए, ताकि उनके डॉलर बाहर ना जाएं, वो चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की बाइंग कम होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, वहां पे गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, अमेरिका से आज से वहां पे 10% इंपोर्ट ड्यूटी शायद गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ताकि सोने के जो भाव है हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा हो जाए। तो सिद्धि जी, ये एक अच्छी न्यूज है हमारे लिसनर्स के लिए जो अमेरिका में रहते हैं, बिकॉज वी make money in dollars, we spend in dollars and the gold is trading in dollars. तो हम चाहते हैं कि आप खुद comparison करें, हिंदुस्तान से सोने के जो भाव है वो तकरीबन 10% का फर्क होगा once the government imposes duty. तो आप US में सोना खरीदने से बिल्कुल पीछे ना हटें, इनफैक्ट आप US में गोल्ड खरीदेंगे तो आप, जो लोग इंडिया जाके पहले गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे तब भी गलत था, लेकिन आज की डेट में तो डेफिनेटली बेनिफिट यूनाइटेड स्टेट्स में रहेगा, क्योंकि आप अपनी डॉलर्स को यूज करके गोल्ड खरीद सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनी एडिशनल 10% गवर्नमेंट फी ऑन गोल्ड प्राइस। सो मुझे लगता है सिद्धि जी, हमारे अमेरिका में रहने वालों के लिए ये गुड न्यूज ही है। हम चाहेंगे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें, आप चिंता ना करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उनका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही, लेकिन वंस द गवर्नमेंट इम्पोसेस 10% इंपोर्ट ड्यूटी इन इंडिया, द प्राइसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स विल बी चीपर। सो मुझे लगता है हमारे मित्रों के लिए गुड ही न्यूज है। वो अब आप प्यार से वो गाना चला दीजिए, मेरा फेवरेट, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
1: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों आप लोगों ने तो सुन ही लिया है कि इंडिया में जो फिलहाल डिस्करेजमेंट है गोल्ड बाइंग के लिए, उसका असर यहाँ पर क्या होने वाला है। और उसी के साथ साथ आज ही आप विजिट कर सकते हो rajjewels.com और अपनी गोल्ड परचेजेस प्लान कर सकते हो। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल है, आपके भी कोई एडिशनल क्वेरीज है जो आप बॉबी जी के सामने लेके आना चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो @rjmirchisiddhi @siddhi, और आपका सवाल मैं इसी गोल्ड डिकोडर सीरीज में बॉबी जी के सामने लेकर आऊंगी, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेप्पी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
8: June 2nd, 2026, अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st। सुजीत सिंह इज द चेंज वी नीड।
7: रेड फॉर बाय सुजीत सिंह फॉर कांग्रेस।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकॉग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट, और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था। और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर। और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do Nautanki, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La birba, la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
11: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
12: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
15: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
13: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
16: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, सस्पेंस लवर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट, दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। और वैसे यार, इस मूवी में मोहनलाल रिटर्न्स एज जॉर्ज कुट्टी, और ये ट्रेलर ना बहुत ही ज्यादा डार्क चैप्टर रिवील करता है एज ओल्ड सीक्रेट्स कम बैक टू हॉन्ट हिम। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में यही एक बहुत बड़ा चार्म है कि अलाउड नहीं होती, लेकिन दिमाग को फुल टाइम काम पे लगा देती है, क्योंकि हर सीन में डाउट, हर साइलेंस में एक क्लू होता है। तो आप भी बताना दोस्तों, दृश्यम देखते वक्त क्या आप भी डिटेक्टिव बन जाते हो या बस एंड ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do Nautanki, have a funky time.
2: दोस्तों, बॉलीवुड कॉमेडी का एक फेवरेट फॉर्मूला वापस आ रहा है, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशन और फुल ऑन फैमिली स्टाइल केओस। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ चुका है और इसमें फीचर हो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दज़र अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कंफ्यूजन भी है और वो टिपिकल अब कौन किसके साथ है वाली कॉमेडी। वैसे मेरा टेक तो ये है इस पे कि यार अगर राइटिंग शार्प हुई ना तो जी हाँ, ये फिल्म वीकेंड लाफ्टर डोज जरूर बन सकती है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है बॉलीवुड में कि यार कब तक वही घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कभी कोई नई कॉमेडी नहीं आ सकती। और उससे भी ज्यादा मुझे कंफ्यूजन इस बात का है, इनफैक्ट क्यूरियोसिटी इस बात की है कि वाई आयुष्मान खुराना, वाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। वैसे थोड़ा सा मुझे इस वजह से यू नो क्यूरियोसिटी तो है कि शायद आयुष्मान ने स्क्रिप्ट देखी होगी, पसंद की होगी, क्योंकि आयुष्मान की स्क्रिप्ट चूजिंग पे थोड़ा सा भरोसा तो है। तो हाँ, उस वजह से थोड़ा लगता है कि शायद कोई हटके स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देख के लग तो नहीं रहा है कि ज्यादा हटके होने वाली। वैसे आप ही बताओ दोस्तों, आपको रिलेशनशिप कॉमेडी पसंद है या आप भी बोलते हो कि यार रियल लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, अब वही चीजें स्क्रीन पे नहीं देखनी? जरूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आयुष्मान का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है उसे मैं मिस नहीं करने वाली, इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची, और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।